0: हाँ चेन्नई जी।
1: Charlie 6910-4, Northeast request in mind.
0: 4, I'll be en route to PSA.
1: Charlie 6910-4.